0: अधूरी सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे और अब पूरे हैं हम।
1: BFBS गोरखा रेडियो।

में 62 पैसा रे बिक्री दर 151.22 रुपया। यूरोपियन यूरो एक को खरीद दर 172.66 रुपया रे बिक्री दर 173.34 रुपया। यूके पाउंड स्टर्लिंग एक को खरीद दर 179.34 रुपया रे बिक्री दर 200.13 रुपया। स्विस फ्रैंक एक को खरीद दर 186.76 रुपया रे बिक्री दर 187.50 रुपया। ऑस्ट्रेलियन डॉलर एक को खरीद दर 105.61 रुपया रे बिक्री दर 106.04 रुपया। कैनेडियन डॉलर एक को खरीद दर इसलिए फेरी सुनोस कैनेडियन डॉलर एक को खरीद दर 106.46 रुपया रे बिक्री दर 106.89 रुपया। सिंगापुर डॉलर एक को खरीद दर 116.65 रुपया रे बिक्री दर 117.11 रुपया। जापानीज येन 10 को खरीद दर 9.34 रुपया रे बिक्री दर 9.38 रुपया। सऊदी अरेबियन रियाल एक को खरीद दर 40.13 रुपया रे बिक्री दर 40.29 रुपया। कटारी रियाल एक को खरीद दर 41.35 रुपया रे बिक्री दर 41.52 रुपया। साउथ कोरियन वोन 100 को खरीद दर 9.48 रुपया रे बिक्री दर 9.88 रुपया। हांगकांग डॉलर एक को खरीद दर 19.21 रुपया रे बिक्री दर 19.29 रुपया। आज नेपालको बजारमा सुन चाँदीको मूल्य यस प्रकार रहेको छ। छापावल सुन यानि कि फाइन गोल्ड 49 पर तोला रहेको छ 2,86,700 रुपियाँ र असल चाँदीको मूल्य प्रति तोला 4,640 रुपियाँ।

चलचित्र अर्पणको यो मिठो सुमधुर गीत पश्चात यहाँ बाप्पी लहरीलाई मैले स्वागत गरिसकेकी छु र वहाँ भन्नुहुन्छ, दिल में हो तुम, आँखों में तुम, बोलो तुम्हें कैसे चाहूं।